परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा,

हेलो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक। तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके तुहाडे नाल हाजिर हो गए जी। न्यूयॉर्क स्टूडियो तो, न्यूजर्सी तो, मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक। प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नू जी। अज आपां कुछ गीत सुरिंदर शिंदा भाजी होना दे सुनांगे ते पुत जटा दे पहला गाना तुहाडी सेवा विच। उस तो बाद आपां फिर अगला प्रोग्राम जिहड़ा हैगा ओह खबरां दा कुछ करांगे, फिर डाक्टर साहब दा प्रोग्राम होएगा। दो घंटे दा प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके हाजिर हो गए जी। लो जी, पेश है पहला गीत।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तों ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत स्रोतियों ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते प्रात्री भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनों दिलां ते दस्तक देन वाला तुहाडे दिलां दी धड़कन वधाउण वाला भाखदे मसले लिआउण वाला वी आर ओनली फोन कॉल अवे बिल्कुल दोस्तों असी फोन कॉल अवे ही हां तुहाडे तों ते गल इस तरह है भाई अज असी काला नहीं लेंदे सैटरडे कल है संडे कल है जी शायरो शायरी का प्रोग्राम ओदे विच तुहाडा ही प्रोग्राम है तुहाडियां ही कालां लईयां जाणगियां अज पहले आवर विच दोस्तों मैं इनकलाबी कवि संत राम उदासी जी हुणा ते गलबात करांगा ओदियां दुश्वारियां ते ओदे ते जो जुल्म कीता गवर्नमेंट ने सारा कुछ जानदियां होयां वी ओनू लावारस करार दे के स्टेशन दे उत्ते ही अग ला दित्ती गई ते ओना दी जड़ा जात पात छुआ छात है साडे समाज विच कोड है असल च जिन्ना ने ए शुरू ही कीता कोड ओ ने साडे समाज दे विच ए लोग ते बेचारे कामे ने वर्कर ने ते अगले आवर दे विच दोस्तों मालका दस तां सही दर दर नचाउणा क्यों भुलिया नू दाल दुनिया दे मालका दस ते सही दर दर नचाउणा क्यों भुलिया नू टोए अमीरां दे नोटां नाल भर देना भुल गया क्यों ठंडिया चुल्हिया नू पर टोए अमीरां दे नोटां नाल भर देना भुल गया क्यों ठंडिया चुल्हिया नू बाद जाता नू दरवेश बना देना ते चिकनी सुट दे मोती उमलिया नू गदार मान दे इजतां ते पातशाहियां सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों तुसी सुन रहे हो जी प्रवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट अज सैटरडे है 25 अप्रैल ते टेम्परेचर भी ठीक ठाक है जी अज 17 का ते टाइम साडी सोहनी जी स्टूडियो दी घड़ी ते इस वक्त दोस्तों जर्मन दे 3:19 हो गए ने ते साडा स्टूडियो दा टेलीफोन है जी 0049-171-48-69-514 0049-171-48-69-514 जी ते मैं ना मतलब कि तुहानू एक दोस्तों गीत सुनाउण जा रहा वा जेड़ा संत राम उदासी जी हुणा दी ओरिजिनल वॉयस दे विच है ते गलबात शुरू करन तों पहला आ लो जी।

किन्नी प्यारी आवाज है दोस्तों, और किन्नी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसी साथी की सरगर्मी का कोई किसी किस्म का भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्होंने भी परवाह ना की, ना ही मौत तो डरते सन। मैं का गीत नहीं, मेरी मौत तो ना, मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नू बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उदे ते उदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उदी बोली नू लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उदी बोली ने जां उदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसाना किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटि दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत, भरा, पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जा नूं युद्ध ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों एक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी, ये तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह होणा ने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया, ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अहे अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है, ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा, ते हैगा ते फिर ओह लावारस किदां होया। घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हां जी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हू लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाउंदे हन रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप दा नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ

0: घोड़ा चतुरा एक पेरा है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये भुसत जात, अपने ही जाल में फसत जात, हम मरत

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खट पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल

गुरुस्वारे सत्कार्यो गुरु खालसा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दाए 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नाम देवा गुरु सिख संगत वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दे दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते पावन चरण कमलां ते कौतकां राहीं पवित्र होई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ ते 300 साल साजना दिवस की स्वयमान परी याद में सदीवी बनाउण लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती नूं 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद में चक माता नानकी का नाम दिता है। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र के गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर ते आए कश्मीरी पंडितों की बेनती ते समुची मानता ते विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार ते समाजिक आजादी नूं बरकरार रखण लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों 9वें पातशाह हजूर का गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया सी। इस पिछों तां लासानी रूहानी कौतकां दी चढ़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखां नूं अणगैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करन उपरंत गुरु दर तो आनंद प्राप्ति की रीझ रखण वालियां ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा 10वें पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। ओ पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ, गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमय जिंदगी जीव सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सन 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पावर राही सीस भेट करन वाले 5 गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आं, आप उन्हां अगे सीस निवाउंदे आं, आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालियां नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदे होया ये वचन उचारे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे। इसे गुरु खालसा पंथ के बोल वाले इस पंथ राही सरबत दे भले दे कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुर्बान कर

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल रोजाना सुनो।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3059 732-874-3259 and 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज।

0: गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर पे
1: आए कश्मीरी पंडितां दी बेनती ते
0: समुची मानता ते विशेष करके हिंदुस्तान वासियां दी धार्मिक सभ्याचार अते समाजिक आजादी नूं बरकरार रखण लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया ते इसी दिल्ली तों कुछ अरसे पिछों नौवें पातशाह हजूर दा गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही के वसीस ही लिआंदा गया सी। इस पिछों तां लासानी रूहानी कौतकां दी चढ़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वल्लों इस तरह संसारी मनुखां नूं अणगैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करन उपरंत गुरु दर तों आनंद प्राप्ति दी रीझ रखण वालिआं ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दित्ता। शायद इसे लई इस धरती दा दसम पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दित्ता। ओ पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमय जिंदगी जीव सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सन 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पावल राही सीस भेट करन वाले पंज गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आ आप उन्हां अगे सीस निवाउंदे आ आपके गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालिआं नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदे होइआं ਇਹ ਵਚਨ ਉਚਾਰੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੰਥ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ

यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जा।

0: घोड़ा चतुर
1: ये तो फिर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये भुसत जात, अपने ही जाल में फसत जात। हम

0: गीत होर सुन दे जिस इंद्र सिंह दस
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले भाई आज तो नजारा आ गया भाई
2: देखो ना जी इतनी सोनी जन लेके आया
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया वो ताली जेतो वाले
2: भाई
1: ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई जिस बहुत बैठा बैठा हो जाए
2: मालको ला दें पैसे नहीं लेने तुझे
1: भाई वाह वाह वाह

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301